0: सुप्रभात मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नया दिन, नया हफ्ता और वही मंडे जिसका नाम सुनते ही ना तो बहुतों की नींद वो वापस गायब हो जाती है। लेकिन ठहरो जरा, आज का मंडे अलग है क्योंकि इस बार हम थका नहीं ताजगी लेकर उठेंगे। सोचे यार, हर मंडे को अगर एक फ्रेश स्टार्ट की तरह जिया जाए तो जिंदगी कितनी एनर्जेटिक लगेगी ना। पिछले हफ्ते की टेंशन, डेडलाइन, फ्राइड सबको छोड़ दो, वहीं जो बिलोंग करती है बीते कल में। आज का दिन है नया चैप्टर शुरू करने का। एक कप चाय, थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब और ये सोच कि आज मैं मुस्कुराऊंगा बिना वजह ही, बस इतना ही काफी है हफ्ते की शानदार शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों, उठो, खिड़की खोलो, उस सुबह की हवा को महसूस करो क्योंकि मंडे थकान नहीं तुम्हें जगाने आता है। और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, आपका मंडे एकदम गुड करने के लिए आता हूँ। चलिए फिर, अब लाने वाला हूँ आपकी सुबह में वो फ्रेशनेस का डोज जो पूरे हफ्ते साथ रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग की मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ, एक मुस्कान के साथ और एक प्यारे से गाने के साथ इन द शो।
1: Only on MGM 90.1.

să te gândești, dar sări, vără sărări.

ताले पुना नवतर सरिवर सर सरिवर सर सरिवर सर।

శూన్యాల్లోనూ నొక్కున్నాడు. ఇల్లు పిల్లనారా పిల్లాన్ని.

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज से शुरू हो रही है नवरात्रि। आरजे अदनान आपके साथ है और नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि में 9 दिन 9 ऐसे महिलाओं के बारे में हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी से इस दुनिया में परिवर्तन लाने की कोशिश की है और इंसानियत बरकरार रखी है।
1: वो शक्ति है।
0: और पहले दिन हम बात करेंगे आज अपने शो में मदर टेरेसा के बारे में। अपनी पूरी जिंदगी गरीब, बीमार और मजबूर लोगों के लिए समर्पित की। अगर आपको लगता है कि एक इंसान दुनिया को बदल नहीं सकता, तो मदर टेरेसा का नाम आपको सोचने पर मजबूर करेगा। उनका जन्म 1910 में स्कोपजी मैसेडोनिया में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा कोलकाता में बिताया। मिशनरी ऑफ चैरिटी के थ्रू उन्होंने ना सिर्फ लोगों को खाना और दवाई दी, बल्कि उन्होंने प्यार, इज्जत और गरिमा का एहसास दिलाया। 1979 में उनका काम और सेवा इतनी सराहनीय थी कि उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मिशनरी ऑफ चैरिटी का मदर टेरेसा ने 1950 में किया। कोलकाता में गरीब, बीमार और अकेले रहने वाले लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पर्पस था कि टू केयर फॉर द हंग्री, द सीक, द ऑर्फेड एंड द डाइंग, गरीब और बीमार की सेवा करना, ऑर्फेंस और बच्चों की देखभाल करना, लेप्रोसी पेशेंट्स और एड्स पेशेंट की सेवा करना, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ये उनका काम था। और सबसे खास बात तो इसी काम को मद्देनजर रखते हुए उन्हें 1979 में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल पीस प्राइज। इसी के साथ 1980 में भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। तो आज के दिन जब आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी भर रहे हैं, एक पल रुककर सोचिए कैसे हम भी अपने छोटे काम से किसी की जिंदगी रोशन कर सकते हैं। मदर टेरेसा ने यही सिखाया, प्यार और सेवा की शक्ति कभी छोटी नहीं होती। दोस्तों, इसी जज्बे के साथ हम शुरू करते हैं नवरात्रि स्पेशल सीरीज का पहला दिन। आपकी भी जिंदगी से ना तो आप किसी की जिंदगी में रोशनी भर सकते हो, तो मदद करते रहिए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते रहिए और सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ।
2: ओनली ऑन MGM 90.8।

0: गुड वाली मॉर्निंग दोस्तों, आरजे अदनान आपके साथ आया है इन द शो.
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. और इस वक्त ना तो हम एक गेम खेलते हैं जिसमें मैं आपको मौका देता हूँ क्या करने का. हाँ एग्जैक्टली, गिफ्ट जीतने का और मेरे पहेलियों का जवाब देने का.
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी.
0: तो आज की पहेली कुछ ऐसी है कि ऐसी कौन सी चीज है जहाँ अमीर हो या गरीब सबको कटोरी लेकर खड़ा होना ही पड़ता है. यहाँ पर भेदभाव कुछ नहीं होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, बस आपको कटोरी लेकर खड़ा होना पड़ता है. सो बताइए ये कौन सी जगह है, बताइए. सो जल्दी करें क्योंकि यार बहुत प्यारी जगह है. और एक मैं आपको हिंट देता हूँ, ये खाने की जगह है. अब इतनी बड़ी मैंने हिंट दे दिया तो जवाब भी आप जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9359320080. और ये खाने की चीज इतनी बढ़िया है ना भाई साहब, बस आप जवाब दीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह है जहाँ पर अमीर हो या गरीब सबको कटोरी लेकर खड़ा होना ही पड़ता है. जल्दी जवाब दीजिए, फिर से नंबर दोहराता हूँ 9359320080. जल्द से जल्द जो जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा. सो जल्दी करे और सुनते रहे.

जिंदगी में हम सब एक ही रेस में भाग रहे, काम, सोशल मीडिया, गोल और सपने। लेकिन इस दौड़ में एक चीज हम पीछे छोड़ देते, वो है अपनी नींद पूरी करना। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो। ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और फिलहाल वक्त हो चुका है अपना लाइफ मंत्रा का। हाँ, वही नींद जो बचपन में सबसे प्यारी लगती थी, अब बड़ी उम्र में सबसे रेयर हो गई है। देखा जाए तो हेल्दी लाइफ सिर्फ हेल्दी खाने और एक्सरसाइज से नहीं होती है, बल्कि पूरी होती है अच्छी नींद से। साइंस कहता है कि अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हो तो आपकी बॉडी रिपेयर होती है, स्ट्रेस कम हो जाता है और माइंड शार्प रहता है। और अगर नींद अधूरी हो तो मूड खराब, कॉन्सेंट्रेशन डाउन और इम्यूनिटी लो हो जाती है, सब कुछ बिगड़ ही जाता है। कभी सोचा है, फोन चार्ज करने के लिए हम पावर बैंक रखते हैं, लेकिन खुद के लिए हम अपनी एनर्जी रिचार्ज करते ही नहीं है। और रिचार्ज होने का सबसे सिंपल तरीका है एक अच्छी नींद। तो आज का लाइफ मंत्र यही है कि खुद को थोड़ा रेस्ट दो, क्योंकि आराम ही जरूरत है। काम कल भी होगा आराम से, सिर्फ अपनी नींद पूरी कीजिएगा। देखो, अभी तो मत कीजिए, अभी आपका सुबह का उठने का वक्त है, लेकिन तय कीजिएगा कि आप ना तो आज से तकरीबन 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करोगे, आने वाला कल आपका एकदम फ्रेशनेस में शुरू होगा। सो ये लाइफ मंत्र याद रखिएगा और सुनते रहिएगा।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड

0: फरमाइश कुछ भी हो, आरजे अदनान आपके साथ यहाँ पर बैठा है आपकी फरमाइश पूरी करने इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमटीएम 90.8 एफएम। फरमाइश में आज की फरमाइश आई है मनाली काय की तरफ से इस गाने के लिए।
2: झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा
0: वादा तेरा वादा, क्या बात है। किशोर कुमार जी की आवाज में गाना है दुश्मन। इस फिल्म से 1971 में आई थी ये फिल्म। और मनाली जी की फरमाइश पर आप ये गाना हम प्ले करेंगे। बाय द वे दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। देर मत कीजिए, जल्दी करें, क्योंकि मैं आपके फरमाइश का इंतजार कर रहा हूं।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हेलो हाँ भाई, तुझसे ही कह रहा हूँ, तू जो अभी पानी वेस्ट कर रहा है ना, जरा सोच समझ के, वरना बड़ा पछताएगा। तो बात कुछ ऐसी है की सध्या सगळीकडे दुष्काळ आहे आपल्याला माहिती, आणि यासाठी आपल्या छत्रपती संभाजीनगर सुद्धा आता प्रिपेअर होत आहे येणाऱ्या काळात पाणी टंचाई होऊ नये म्हणून काही नवीन रुल्स आणि रेग्युलेशन लागू करण्यात आलेले आहेत। ते आतापर्यंत तुम्हाला माहिती सुद्धा झालेलं असेल आणि याबद्दल आपण दररोज बोलतोय सुद्धा, क्यू बात कर रहे, क्योंकि बेसिक सी चीजें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। सिंपल सी बात है, महानगर पालिका ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी कम ना पड़े, इस वजह से आप आज से ही ना तो पानी बचाने का ट्राई कीजिएगा और पानी वेस्ट मत कीजिएगा। जास्त करून रस्त्यांवर आपण बघतो की लोक हे सर्रास पाणी टाकून देतात, गाड्या धोतात, नळ आल्यावर घरातील पाणी भरणं झालं तर रस्त्यावर पाणी ते फेकून देतात, म्हणजे तसं नळ चालू ठेवतात, ते बंद पण करत नाहीयेत। इस वजह से क्या होगा की आने वाले वक्त में पानी की बहुत दिक्कत आ सकती है। तो पानी की दिक्कत फ्यूचर में ना आए, इस वजह से आज से हमें बेसिक से कुछ चीजें फॉलो करना है। हालांकि ये सब बातें हमें बचपन से सिखाई जाती है लेकिन हम अमल नहीं करते, बट आज अमल करने का वक्त आ गया है। तो जरूरत हो उतना ही पानी यूज कीजिएगा, फजूल में पानी वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा पानी वेस्ट किया तो महानगर पालिका आपसे फाइन भी वसूल कर सकती है, तकरीबन 15,000 से फाइन स्टार्ट है। फिर भी आप नहीं सुधरे तो फाइन बढ़ सकता है 17,000, 18,000, 20,000 तक का। तो भाई जी, बहन जी, काका, काकू, मामा, मामी, फक्त सिंपल सी गोष्ट तुम्हाला करायची आहे की पाण्याचा अपव्यय करायचा नाहीये, ही गोष्ट लक्षात ठेवा आणि पाणी वाचवण्यासाठी मदत करा। आहे ना, तुम्ही करणार आहेत, करणार ना, हो की नाही, हो म्हणा। एक्झॅक्टली, थँक यू अँड स्टे ट्यून।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: नवरात्र उत्सव शुरू हो गया है, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM। एक इम्पोर्टेंट अपडेट भी जानना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि देखो नवरात्र उत्सव है तो हम सभी लोग कर्णपुरा जाते हैं, वहां पर मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो मंदिर जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट रास्ते हैं वो 9 दिन के लिए बंद रहेंगे ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। ऐसा नहीं कि आपको मंदिर जाते नहीं आएगा, मंदिर तो जाते आएगा, लेकिन जो ट्रैफिक है वो थोड़ी चेंज कर दी गई है। तो 9 दिन तक कौन से रास्ते बंद रहेंगे? तो लोखंडी पुल से पंचवटी चौक ये जाने वाला रास्ता बंद रहेगा, कोकनवाड़ी चौक से पंचवटी चौक ये भी जो रास्ता है वो भी बंद रहने वाला है, एंड भगवान महावीर चौक से पंचवटी चौक यानी कि बाबा पेट्रोल पंप का जो ब्रिज है वो ब्रिज के नीचे का रास्ता बंद रहेगा। ब्रिज के ऊपर से आप जा सकते हो, और स्टेशन से आपको सेंट्रल बस स्टैंड आना है तो ब्रिज के नीचे से आप नहीं आ सकते हो, ब्रिज के ऊपर से ही रास्ता शुरू रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, याद रखिएगा आने वाले 9 दिन तक इस तरीके से थोड़ा ट्रैफिक में बदलाव किया गया है कर्णपुरा मंदिर परिसर में, और यात्रा के दरमियान कोई भी दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम में हम ना फंसे, तो याद रखिएगा ये बातें। एंड फिर से एक बार आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी तो कर्णपुरा यात्रा में तो अपनी मुलाकात होगी, मैं तो जाने वाला हूँ, तरह बताइए अगर आपका जाना हुआ तो क्या कुछ है इस बार स्पेशल वहाँ पर। DM ऑन इंस्टा RJ अदनान एंड स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8 FM।

0: आपने अक्सर ना तो मॉर्फ फोटो के बारे में सुना ही होगा, मॉर्फ फोटो होती है इसके बारे में न्यूज वगैरह सुनी होगी। वैसे आपको पता है कि एग्जैक्टली मॉर्फ फोटो मतलब क्या होती है? देखो, मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक नॉर्मल फोटो अपलोड की, अब कोई दूसरा इंसान उस फोटो को एडिटिंग से या तो एआई की मदद से बदल देता है और उस फोटो का गलत इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया पर वायरल करता है, तो ऐसे फोटो को कहा जाता है मॉर्फ फोटो। अब सोचिए, आपने तो कुछ गलत किया नहीं, लेकिन कोई आपकी फोटो बदलकर लोगों के बीच वायरल कर रहा है तो आपकी रेपुटेशन को तो नुकसान पहुंचेगा ही ना। अपने शहर में भी ऐसा ही केस एक सामने आया है, जहां पर एक लेडी है जिनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक थी, वहां से एक बंदे ने उनकी फोटो का स्क्रीनशॉट निकाला और एक फेक अकाउंट तैयार करके उस फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो ये बात सामने आई, बाद में उसको पुलिस ने पकड़ा वगैरह, जो कुछ कार्रवाई होनी है वो तो हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर हम जो भी फोटो अपने अपलोड करते हैं वो भाई सेफ नहीं है, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आप सोचोगे कि यार फिर सोशल मीडिया यूज ना करें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, करना चाहिए। तो सेफ्टी के लिए अपनी प्रोफाइल प्राइवेट रखिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गई या तो फिर जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पर अपनी प्रोफाइल हमेशा प्राइवेट रखें। इससे क्या होगा कि अननोन इंसान आपकी जो फोटो वगैरह है वो देख नहीं सकेगा। जो आपको फॉलोइंग रिक्वेस्ट आते हैं ना सोशल मीडिया पर, तो अननोन इंसान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिएगा। क्या पता वो फ्रेंड बनने के लिए नहीं, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए आया हो। प्राइवेट फोटो, लोकेशन एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर मत डालिएगा। इतने कुछ बेसिक चीजें आपने फॉलो की ना, तो आप भी ऐसे चीजों से बच सकते हो और मॉर्फ फोटोग्राफी से भी आप बच सकते हो। तो बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि जितना यूजफुल आपके पास सोशल मीडिया है ना, तो उतना ही हार्मफुल उसका यूज भी होता है। याद रखिएगा ये सारी चीजें एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे टाणा टाणा ऐसा करते हुए ना तो कुछ लोग आधी आधी रात में अपने भाइयों का बर्थडे रास्तों पर सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी, आधी रात में जोर जोर से फटाके फूटते हैं और सड़कों पर धिंगाना होता है, और कुछ लोग ना तो अपने दोस्त का, भाई का, सो कॉल्ड छोटा डॉन का बर्थडे होता है तो सारे रास्तों से घूमते हैं, गाड़ियों के हॉर्न बजाते हैं और सभी को परेशान करते हैं आधी रात में। तो ऐसा ही कुछ अपने शहर में हो रहा था, तो तकरीबन 15 से 20 लड़कों पर ना केस दर्ज हुआ है जो कि क्रांति चौक में और अपने मेल कॉर्नर के पास खड़े रहकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यार कोहनी क्या ही कर लेगा, लेकिन अपने शहर की पुलिस एक्टिव मोड पर है भाई। तो भाई आपके भी मन में कुछ ख्याल होगा कि यार अब तो अपने भाई का बर्थडे आने वाला है, उसको खुश करने के लिए अपन ऐसा एकदम भयंकर माहौल बनाते ना आधी रात में कि भाई खुश हो जाएंगे और पार्टी दे देगा। खैर भाई पार्टी तो नहीं देगा, लेकिन बर्थडे का दिन उसका हवालात में गुजरने वाला है, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ जो उस बर्थडे पार्टी में मिले तो उनका भी दिन हवालात में गुजरने ही वाला है। तो बात याद रखिएगा, सभी लोग की रस्ते ग्राउंड बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह नहीं है, पब्लिक प्लेस। अगर आपने पब्लिक प्लेस में पब्लिक को परेशानी की तो पब्लिक सर्वेंट यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट आपकी अच्छी खासी धुलाई कर सकता है। जैसा इन लोगों पर कार्रवाई हुई वैसी आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। सो भाई को खुश करने के चक्कर में खुद को बड़ा दुखी करोगे आप। सो समझदार बनिए, बाकी आप समझदार हो ही तो सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट मैं अभी आपको देने वाला हूँ, कान खोल कर सुनिएगा। साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से ना तो लाखों लोग अपना कीमती पैसा पूरा खो दे रहे हैं और साइबर फ्रॉड के अंदर फंसे जा रहे हैं। अभी एक नया स्कैम शुरू हो चुका है आरटीओ के नाम से। आपके व्हाट्सएप में या व्हाट्सएप ग्रुप पर ना तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट आरटीओ चलान बोलकर एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा कि फॉर व्हीकल चलान टूडे प्लीज अपडेट योर आरटीओ प्रोसेस, द अपडेट योर व्हीकल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ड्राइविंग लाइसेंस, थैंक यू आरटीओ गाइडलाइन, ऐसा मैसेज होगा और नीचे एक ई चलान नाम से एपी की फाइल दिखाई देगी। तो आपको लगेगा कि यार आरटीओ की तरफ से मैसेज आया तो ई चलान है, इसको ओपन करते हैं। जैसे आप ना तो ये ई चलान व्हाट्सएप पर ओपन करोगे तो आपका पूरा के पूरा व्हाट्सएप हो फोन हो वो हैक हो जाएगा और ये अनवांटेड एपी की फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और इस जरिए ना तो हैकर्स के पास आपका पूरा डेटा चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो नया स्कैम है मार्केट में आ चुका है आरटीओ के नाम से। तो अगर आपके पास भी ना तो आरटीओ का कोई मैसेज आया हो और एपी की फाइल आपको दिखाई दे रही हो तो उसे डिलीट कीजिएगा, तुरंत डिलीट कीजिएगा, उसे डाउनलोड करने की कोई भी गलती मत कीजिएगा। एक डाउनलोड से आपका पूरा अकाउंट हैक हो सकता है और ऐसे घटनाएं आजकल बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो बी सेफ बी केयरफुल, स्पेशली अपने मम्मी पापा के मोबाइल में ये चेक कीजिएगा कि ऐसे कुछ अपडेट आए है क्या। पापा तो एक बार समझ लेंगे ये कुछ फेक है, लेकिन मम्मी के मोबाइल में भी अगर ऐसे व्हाट्सएप पर उन्हें तो पता नहीं है क्या है, वो गलती से ना तो वो ऐप डाउनलोड कर लेगी और पूरा उनका मोबाइल हैक हो जाएगा। सो बी सेफ बी केयरफुल, ई चलान एपी के ऐप नाम से कोई ऐप अगर आपके मोबाइल में आ रहा हो आरटीओ नाम से तो उसको डिलीट कीजिएगा, डाउनलोड मत कीजिएगा, इम्पोर्टेंट अपडेट है याद रखिएगा। फिर मत कहना कि मुझे पता नहीं था पता चल गया। तो बी सेफ बी केयरफुल, साइबर फ्रॉड से बच के रहिए और अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ फ्रॉड हो रहे हो तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो साइबर क्राइम में। नंबर है 1930 1930 याद रखिए, सेफ रहिए, सुनते रहिए। Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: महावितरण वालों को पता नहीं क्या ही शौक चढ़ाया आजकल यार। अचानक बैठे बैठे शायद से ऑफिस में बोर हो जाते होगे तो बत्ती गुल कर दी शहर की। पिछले कुछ 4 से 5 दिन में ऐसा नजर आ रहा है कि शहर मेरा तो दोपहर के वक्त में हो, शाम के वक्त में हो, या फिर अर्ली मॉर्निंग में हो, या तो फिर सोते वक्त आराम से रात में हो, बत्ती गुल हो जाती है। तकरीबन आधा घंटा, एक घंटा, या तो किस किस एरिया में 2-2 घंटे लाइट आती ही नहीं है। और फिलहाल अब त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हुई है, और इस दरमियान ना अगर ऐसे बत्ती गुल का ये सिलसिला चालू रहा तो इंसान परेशान नहीं हो जाएगा क्या? हो ही जाएगा ना। हाँ, मानते हैं हम कि फिलहाल एक अक्टूबर हीट है, बहुत ज्यादा बिजली खर्च हो रही है, लेकिन उस वजह से इतनी बत्ती गुल करना ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है ही नहीं। अब महावितरण का कहना है कि ELR की वजह से ना तो बत्ती गुल करते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है? इमरजेंसी लोड रिलीफ, इसको कहते हैं ELR, यानी कि जब बहुत ज्यादा बिजली की डिमांड होती है तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस तरीके से बत्ती गुल की जाती है, हार्डली 15 मिनट तक। तो वो बात तो हम सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन 15 मिनट नहीं, किसी किसी एरिया में तो 1 घंटा या 2 घंटे भी बिजली गुल हो जाती है। आप आपके तरीके से लोड मैनेज करने का काम कर रहे हो 15 मिनट बत्ती गुल करने का, लेकिन सच में 15 मिनट ही करते हो क्या आप? खैर, आप क्या ही करें, एक तो अक्टूबर हीट के चटके बैठ रहे और इधर से बत्ती गुल होने वाले चटके अलग से बैठ रहे। एडजस्ट कीजिएगा आप, बाकी तो सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान और MGM 90.8 FM।
1: ये गाना तो हम सभी ने सुना है, लेकिन इसका मतलब आपको पता है? कुन फयकुन, ये डायरेक्टली कुरान से आया है और इसका मतलब होता है खुदा ने कहा हो और हो गया। अब यही एक सेम चीज ना तो हमें बाइबल में भी दिखती है। बाइबल में लिखा है When God said, Let there be light and there was a light। कुछ ऐसा इस गाने का एक मैजिक है। और इसी गाने में एक और लाइन है जो कि सीधे आई है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में संस्कृत में लिखा है, जिसका मतलब होता है देखिए ना कि इरशाद कामिल के लिखे इस गाने ने, A.R. रहमान जी के म्यूजिक ने हम सभी को ना तो एक साथ जोड़ के रखा है। शायद से इस वजह से ना तो ये गाना हमें इतना पसंद आता है और इतना सुकून देता है। और इन सभी का मतलब एक ही होता है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, अदनान आपके साथ है आज की आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। स्टार्टिंग में ना तो हम एक गेम खेलते जिसका नाम है
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: और इसमें मैंने आपको एक पहेली पूछा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अमीर हो या गरीब सबको कटोरी लेकर खड़ा होना पड़ता है। तो इसका जवाब है गोलगप्पे की दुकान। जी हाँ, पानीपुरी की गोलगप्पे की दुकान, जहाँ पर देखो अमीर हो या गरीब दोनों को तो खड़ा होना ही पड़ता है कटोरी लेकर। सो एकदम सही जवाब दिया है सुष्मिता काले ने। कॉन्ग्रेचुलेशन सुष्मिता जी, आज आप विनर बन चुकी हो। आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो तालियां बजनी चाहिए सुष्मिता जी के लिए। स्टे ट्यून विद आरजे अदनान इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हेलो, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया हो तो होगी अभी आप।
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। वो कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के जरिए। सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, आरजे अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी ना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है। तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो मेरा इंस्टा आईडी आरजी अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूँ ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है। सो देखिएगा जरूर। और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो। और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर DM में मुझे लिखकर भेज सकते हो। आईडी याद रखिए, आरजे अदनान, अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं। RJ_ADNAN इतना याद रखिए। बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। Only on MGM 90.8 FM.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: जी क्या हाल चाल, एकदम मस्त बढ़िया।
1: All is well. RJ and Nanak, a morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा, आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DMKG का इंस्टा पर, RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: शनिवार सुबह 7 से 11 ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: ही तर फक्त तुझा आणि माझ्या क्षणांची कहाणी।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर,
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।
2: बाकी सब ठीक,
3: बस चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक,
3: बस चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक है ना,
3: बस चल रहा है भाई।
2: What about you?
3: हाँ चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक,
3: बस चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक,
3: बस चल रहा है।
2: बाकी सब ठीक है ना।
3: हाँ ठीक है।
2: और तेरा?

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय,

कीर्ति तुझी भारी, डंका तुझा ऐकून गा।

लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: ये गाना तो हम सभी ने सुना है, लेकिन इसका मतलब आपको पता है? कुन फयकुन, ये डायरेक्टली कुरान से आया है और इसका मतलब होता है खुदा ने कहा हो और हो गया। अब यही एक सेम चीज ना तो हमें बाइबल में भी दिखती है। बाइबल में लिखा है When God said, Let there be light and there was a light। कुछ ऐसा इस गाने का एक मैजिक है। और इसी गाने में एक और लाइन है जो कि सीधे आई है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में संस्कृत में लिखा है, जिसका मतलब होता है देखिए ना कि इरशाद कामिल के लिखे इस गाने ने, AR रहमान जी के म्यूजिक ने हम सभी को ना तो एक साथ जोड़ के रखा है। शायद से इस वजह से ना तो ये गाना हमें इतना पसंद आता है और इतना सुकून देता है। और इन सभी का मतलब एक ही होता है,

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

हेलो हाँ भाई, तुझसे ही कह रहा हूँ, तू जो अभी पानी वेस्ट कर रहा है ना, जरा सोच समझ के, वरना बड़ा पछताएगा। तो बात कुछ ऐसी है की सध्या सगळीकडे दुष्काळ आहे आपल्याला माहिती, आणि यासाठी आपला छत्रपती संभाजीनगर सुद्धा आता प्रिपेअर होत आहे येणाऱ्या काळात पाणी टंचाई होऊ नये म्हणून काही नवीन रूल्स आणि रेग्युलेशन लागू करण्यात आलेले आहेत। ते आतापर्यंत तुम्हाला माहिती सुद्धा झालेलं असेल आणि याबद्दल आपण दररोज बोलतोय सुद्धा, क्यों बात कर रहे, क्योंकि बेसिक सी चीजें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। सिंपल सी बात है, महानगर पालिका ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी कम ना पड़े, इस वजह से आप आज से ही ना तो पानी बचाने का ट्राई कीजिएगा और पानी वेस्ट मत कीजिएगा। जास्त करून रस्त्यांवर आपण बघतो की लोक हे सर्रास पाणी टाकून देतात, गाड्या धुतात, नळ आल्यावर घरातील पाणी भरणं झालं तर रस्त्यावर पाणी ते फेकून देतात, म्हणजे तसं नळ चालू ठेवतात, ते बंद पण करत नाहीयेत। इस वजह से क्या होगा की आने वाले वक्त में पानी की बहुत दिक्कत आ सकती है। तो पानी की दिक्कत फ्यूचर में ना आए, इस वजह से आज से हमें बेसिक से कुछ चीजें फॉलो करना है। हालांकि ये सब बातें हमें बचपन से सिखाई जाती है लेकिन हम अमल नहीं करते, बट आज अमल करने का वक्त आ गया है। तो जरूरत हो उतना ही पानी यूज कीजिएगा, फजूल में पानी वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा पानी वेस्ट किया तो महानगर पालिका आपसे फाइन भी वसूल कर सकती है, तकरीबन 15,000 से फाइन स्टार्ट है। फिर भी आप नहीं सुधरे तो फाइन बढ़ सकता है 17,000, 18,000, 20,000 तक का। तो भाई जी, बहन जी, काका, काकू, मामा, मामी, फक्त सिंपल सी गोष्ट तुम्हाला करायची आहे की पाण्याचा अपव्यय करायचा नाहीये, ही गोष्ट लक्षात ठेवा आणि पाणी वाचवण्यासाठी मदत करा। आहे ना, तुम्ही करणार आहेत, करणार ना, हो की नाही, हो म्हणा। एक्झॅक्टली, थँक यू अँड स्टे ट्यून। Only on MGM 90.8.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

नवरात्र उत्सव शुरू हो गया है, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM। एक इम्पोर्टेंट अपडेट भी जानना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि देखो नवरात्र उत्सव है तो हम सभी लोग कर्णपुरा जाते हैं, वहाँ पर मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो मंदिर जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट रास्ते हैं वो 9 दिन के लिए बंद रहेंगे, ताकि वहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। ऐसा नहीं कि आपको मंदिर जाते नहीं आएगा, मंदिर तो जाते आएगा, लेकिन जो ट्रैफिक है वो थोड़ी चेंज कर दी गई है। तो 9 दिन तक कौन से रास्ते बंद रहेंगे? तो लोखंडी पुल से पंचवटी चौक ये जाने वाला रास्ता बंद रहेगा, कोकनवाड़ी चौक से पंचवटी चौक ये भी जो रास्ता है वो भी बंद रहने वाला है, एंड भगवान महावीर चौक से पंचवटी चौक यानी कि बाबा पेट्रोल पंप का जो ब्रिज है वो ब्रिज के नीचे का रास्ता बंद रहेगा। ब्रिज के ऊपर से आप जा सकते हो, और स्टेशन से आपको सेंट्रल बस स्टैंड आना है तो ब्रिज के नीचे से आप नहीं आ सकते हो, ब्रिज के ऊपर से ही रास्ता शुरू रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, याद रखिएगा, आने वाले 9 दिन तक इस तरीके से थोड़ा ट्रैफिक में बदलाव किया गया है कर्णपुरा मंदिर परिसर में, और यात्रा के दरमियान कोई भी दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम में हम ना फंसे। तो याद रखिएगा ये बातें, एंड फिर से एक बार आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी तो कर्णपुरा यात्रा में तो अपनी मुलाकात होगी, मैं तो जाने वाला हूँ। तरह बताइए अगर आपका जाना हुआ तो क्या कुछ है इस बार स्पेशल वहाँ पर। DM ऑन इंस्टा RJ अदनान एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
1: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू? हाय।

0: बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।
1: भाई का बर्थडे टाणा टाणा ऐसा करते हुए ना, तो कुछ लोग आधी आधी रात में अपने भाइयों का बर्थडे रास्तों पर सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी, आधी रात में जोर जोर से फटाके फूटते हैं और सड़कों पर धिंगाना होता है, और कुछ लोग ना तो अपने दोस्त का, भाई का, सो कॉल्ड छोटा डॉन का बर्थडे होता है तो सारे रास्तों से घूमते हैं, गाड़ियों के हॉर्न बजाते हैं और सभी को परेशान करते हैं आधी रात में। तो ऐसा ही कुछ अपने शहर में हो रहा था, तो तकरीबन 15 से 20 लड़कों पर ना केस दर्ज हुआ है, जो कि क्रांति चौक में और अपने मेल गवर्नर के पास खड़े रहकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यार कोहनी क्या ही कर लेगा, लेकिन अपने शहर की पुलिस एक्टिव मोड पर है भाई। तो भाई आपके भी मन में कुछ ख्याल होगा कि यार अब तो अपने भाई का बर्थडे आने वाला है, उसको खुश करने के लिए अपन ऐसा एकदम भयंकर माहौल बनाते ना आधी रात में कि भाई खुश हो जाएगा और पार्टी दे देगा। खैर भाई पार्टी तो नहीं देगा, लेकिन बर्थडे का दिन उसका हवालात में गुजरने वाला है, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ जो उस बर्थडे पार्टी में शामिल है तो उनका भी दिन हवालात में गुजरने ही वाला है। तो बात याद रखिएगा सभी लोग कि रस्ते, ग्राउंड, बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह नहीं है, पब्लिक प्लेस। अगर आपने पब्लिक प्लेस में पब्लिक को परेशानी की तो पब्लिक सर्वेंट यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट आपकी अच्छी खासी धुलाई कर सकता है। जैसा इन लोगों पर कार्रवाई हुई वैसी आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। सो भाई को खुश करने के चक्कर में खुद को बड़ा दुखी करोगे आप। सो समझदार बनिए, बाकी आप समझदार हो ही तो सुनते रहिए।
2: Only on MGM 90.8.

0: आपने अक्सर ना तो मोर फोटो के बारे में सुना ही होगा, मोर फोटो होती है इसके बारे में न्यूज वगैरह सुनी होगी। वैसे आपको पता है कि एग्जैक्टली मोर फोटो मतलब क्या होती है? देखो मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक नॉर्मल फोटो अपलोड की, अब कोई दूसरा इंसान उस फोटो को एडिटिंग से या तो एआई की मदद से बदल देता है और उस फोटो का गलत इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया पर वायरल करता है, तो ऐसे फोटो को कहा जाता है मोर फोटो। अब सोचिए आपने तो कुछ गलत किया नहीं, लेकिन कोई आपकी फोटो बदलकर लोगों के बीच वायरल कर रहा है तो आपकी रेपुटेशन को तो नुकसान पहुंचेगा ही ना। अपने शहर में भी ऐसा ही केस एक सामने आया है जहां पर एक लेडी है जिनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक थी, वहां से एक बंदे ने उनके फोटो का स्क्रीनशॉट निकाला और एक फेक अकाउंट तैयार करके उस फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो ये बात सामने आई, बाद में उसको पुलिस ने पकड़ा वगैरह, जो कुछ कार्रवाई होनी है वो तो हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर हम जो भी फोटो अपने अपलोड करते हैं वो भाई सेफ नहीं है, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आप सोचोगे कि यार फिर सोशल मीडिया यूज ना करें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, करना चाहिए। तो सेफ्टी के लिए अपनी प्रोफाइल प्राइवेट रखिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक हो गई या तो फिर जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पर अपनी प्रोफाइल हमेशा प्राइवेट रखें। इससे क्या होगा कि अननोन इंसान आपकी जो फोटो वगैरह है वो देख नहीं सकेगा। जो आपको फॉलोइंग रिक्वेस्ट आते हैं ना सोशल मीडिया पर, तो अननोन इंसान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिएगा। क्या पता वो फ्रेंड बनने के लिए नहीं, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए आया हो। प्राइवेट फोटो, लोकेशन एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर मत डालिएगा। इतनी कुछ बेसिक चीजें आपने फॉलो की ना, तो आप भी ऐसे चीजों से बच सकते हो और मोर फोटोग्राफी से भी आप बच सकते हो। तो बी सेफ बी केयरफुल, क्योंकि जितना यूजफुल आपके पास सोशल मीडिया है ना तो उतना ही हार्मफुल उसका यूज भी होता है। याद रखिएगा ये सारी चीजें एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.
2: ही तर फक्त तुझ्या आणि माझ्या क्षणांची कहाणी, तुझ्या माझ्यातली क्षण।

0: महावितरण वालों को पता नहीं क्या ही शौक चढ़ाया आजकल यार। अचानक बैठे बैठे शायद से ऑफिस में बोर हो जाते होंगे तो बत्ती गुल कर दी शहर की। पिछले कुछ 4 से 5 दिन में ऐसा नजर आ रहा है कि शहर मेरा तो दोपहर के वक्त में हो, शाम के वक्त में हो, या फिर अर्ली मॉर्निंग में हो, या तो फिर सोते वक्त आराम से रात में हो, बत्ती गुल हो जाती है। तकरीबन आधा घंटा, एक घंटा, या तो किस किस एरिया में 2-2 घंटे लाइट आती ही नहीं है। और फिलहाल अब त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हुई है, और इस दरमियान ना अगर ऐसे बत्ती गुल का ये सिलसिला चालू रहा तो इंसान परेशान नहीं हो जाएगा क्या? हो ही जाएगा ना। हाँ, मानते हैं हम कि फिलहाल एक अक्टूबर हीट है, बहुत ज्यादा बिजली खर्च हो रही है, लेकिन उस वजह से इतनी बत्ती गुल करना ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है ही नहीं। अब महावितरण का कहना है कि ईएलआर की वजह से ना तो बत्ती गुल करते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है? इमरजेंसी लोड रिलीफ, इसको कहते हैं ईएलआर। यानी कि जब बहुत ज्यादा बिजली की डिमांड होती है तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस तरीके से बत्ती गुल की जाती है, हार्डली 15 मिनट तक। तो वो बात तो हम सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन 15 मिनट नहीं, किसी किसी एरिया में तो 1 घंटा या 2 घंटे भी बिजली गुल हो जाती है। आप आपके तरीके से लोड मैनेज करने का काम कर रहे हो, 15 मिनट बत्ती गुल करने का, लेकिन सच में 15 मिनट ही करते हो क्या आप? खैर, आप क्या ही करें, एक तो अक्टूबर हीट के चटके बैठ रहे और इधर से बत्ती गुल होने वाले चटके अलग से बैठ रहे। एडजस्ट कीजिएगा आप, बाकी तो सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट मैं अभी आपको देने वाला हूँ, कान खोल कर सुनिएगा। साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से ना तो लाखों लोग अपना कीमती पैसा पूरा खो दे रहे हैं और साइबर फ्रॉड के अंदर फंसे जा रहे हैं। अभी एक नया स्कैम शुरू हो चुका है आरटीओ के नाम से। आपके व्हाट्सएप में या व्हाट्सएप ग्रुप पर ना तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट आरटीओ चलान बोलकर एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा कि फॉर व्हीकल चलान टूडे प्लीज अपडेट योर आरटीओ प्रोसेस, द अपडेट योर व्हीकल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ड्राइविंग लाइसेंस, थैंक यू आरटीओ गाइडलाइन, ऐसा मैसेज होगा और नीचे एक ई चलान नाम से एपी की फाइल दिखाई देगी। तो आपको लगेगा कि यार आरटीओ की तरफ से मैसेज आया तो ई चलान है, इसको ओपन करते हैं। जैसे आप ना तो ये ई चलान व्हाट्सएप पर ओपन करोगे तो आपका पूरा के पूरा व्हाट्सएप हो फोन हो वो हैक हो जाएगा और ये अनवांटेड एपी की फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और इस जरिए ना तो हैकर्स के पास आपका पूरा डेटा चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो नया स्कैम है मार्केट में आ चुका है आरटीओ के नाम से। तो अगर आपके पास भी ना तो आरटीओ का कोई मैसेज आया हो और एपी की फाइल आपको दिखाई दे रही हो तो उसे डिलीट कीजिएगा, तुरंत डिलीट कीजिएगा, उसे डाउनलोड करने की कोई भी गलती मत कीजिएगा। एक डाउनलोड से आपका पूरा अकाउंट हैक हो सकता है और ऐसे घटनाएं आजकल बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो बी सेफ बी केयरफुल, स्पेशली अपने मम्मी पापा के मोबाइल में ये चेक कीजिएगा कि ऐसे कुछ अपडेट आए है क्या। पापा तो एक बार समझ लेंगे ये कुछ फेक है, लेकिन मम्मी के मोबाइल में भी अगर ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज, उन्हें तो पता नहीं ये क्या है, वो गलती से ना तो वो ऐप डाउनलोड कर लेगी और पूरा उनका मोबाइल हैक हो जाएगा। सो बी सेफ बी केयरफुल, ई चलान एपी के ऐप नाम से कोई ऐप अगर आपके मोबाइल में आ रहा हो आरटीओ नाम से तो उसको डिलीट कीजिएगा, डाउनलोड मत कीजिएगा, इम्पोर्टेंट अपडेट है याद रखिएगा। फिर मत कहना कि मुझे पता नहीं था पता चल गया। तो बी सेफ बी केयरफुल, साइबर फ्रॉड से बच के रहिए और अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ फ्रॉड हो रहे हो तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो साइबर क्राइम में। नंबर है 1930 1930, याद रखिए, सेफ रहिए, सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

क्या हाल चाल, एकदम मस्त। तो बढ़िया हो तो होगी अभी आप। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। वो कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के जरिए। सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, RJ अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी ना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है। तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो मेरा इंस्टा आईडी है RJ अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूँ ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है। सो देखिएगा जरूर। और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो। और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर DM में मुझे लिखकर भेज सकते हो। आईडी याद रखिए, RJ अदनान, अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं। RJ_ADNAN इतना याद रखिए। बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। Only on MGM 90.8 FM.

0: अरे अरे जूते को पगड़ी, पगड़ी को जूता, चदरी को गमछा, सर को पैर बताए, आँख के अंधे कमल नयन कहलाए।
1: जूते को पगड़ी, पगड़ी को जूता, चदरी को गमछा, सर को पैर बताए, आँख के अंधे कमल नयन कहलाए।
0: ऐसन बिन कपड़ा, कपड़ा बिन तन, धड़कन बिन दिल, दिल बिन धड़कन, पहले बुढ़ापा बाद में बचपन,
2: रेसानी धा।
3: अरे बारे मालिक,

अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल, सर वालों के ऊपर मिट्टी, गधे लगाए तेल, अरे बारे मालिक।

0: कन बिन कपड़ा कपड़ा बिन सन धड़कन बिन दिल दिल बिन धड़कन सहल बुढ़ापा बाद में बचपन मागादे सानी धापा माँ
1: अरे भाई मालिक।

अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल, हम जैसों के पैर में बेड़ी लंगड़ा करे कुलेल। अरे वारे मालिक, अरे अरे पाई नकौड़ी, नाम करोड़ी, काट की घोड़ी, सरपट दौड़ी जाए, अजब अजूबा जो देखे रह जाए, तन बिन कपड़ा, धड़कन बिन दिल, पहले बुढ़ापा।

एक दफा की जो हारा सो हारा, आज मोल तोल में दिन बीते तो आ जाओगे गच्चा। अरे लैलो जी लैलो है ये दिल का हीरा सच्चा, न पक्का है न कच्चा।

थोड़ी पकौड़ी मीठी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सोंठ थोड़ा तेल।

में छुपाए हैं चिरागे अलादीन, तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन, तीन को हमेशा करते आए।

कहीं गोलमाल, कहीं ढोल कहीं बोल, सीधी बात टेढ़ी चाल।

ಗೋಳ ಚತುರ ಏಕ ಪೇರ ಏನ ಯಾ ಗೋಳ ಬೋಲ್ಲ ಯಾ ಚತುರ ಬೋಲ್ಲ ಯಾಕ ಚತುರ ನಾರ.